0: France sees into the World Cup semi-finals after defeating Morocco 2-0. Kylian Mbappe opens the scoring on the hour mark before Ousmane Dembele notches the second 6 minutes, later to send France into the semi-finals.
1: स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
2: फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स आर अ स्ट्रांग पिलर ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू लॉन्च द इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेटिव रोडमैप today with Prime Minister Albanese. Through this initiative, we will deepen cooperation not only in cricket but across a wide range of sports. We will work together in sports training, sports science and sports technology. We will strengthen our partnership both on the field and off the field as well. In India, we have democratized not only technology but also sports. Through the Khelo India program, children from small towns, villages and ordinary families have been given a platform to dream big.
1: Aaj Bharat mein sporting talent kuch bade shaharon tak simit nahi hai. Yeh desh ke har kone se, har background se ubhar raha hai. 2030 mein भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है।
2: टुडे स्पोर्टिंग टैलेंट इन इंडिया इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू अ फ्यू मेजर सिटीज। इट इज इमर्जिंग

0: मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे।
1: Tadej Pogacar took a big step towards winning the Tour de France for a record equaling fifth time. The 27-year-old claims a dominant victory on stage 6, regaining the leader's yellow jersey. Take a look at these visuals as we wrap up the bulletin.